पवन तुजना पवन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुजना चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुजना ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुजना इंद्र इंद्रासन बैठे देवते आदर नाले गावन तुदनों सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनों साध विचारे गावन तुदनों जति सती संतोखी गावन तुदनों वीर करारे गावन तुदनों पंडित पढ़न रखीश्वर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनों मोहनिया मन मोहन सुरग मच पयाले गावन तुदनों रतन पाए तेरे अठसठ तीरथ नाले गावन तुदनों जोध महाबल सूरा गावन तुदनों खानी चारे

रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईयां, सिद्धां पुरखां कियां वड्याईयां। तुद बिन सिद्धि किनै न पाईआ, कर्म मिलै नाहीं ठाकर हाईआ। आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सवारन हारा। आसा महला पहला।

जिन दिन करकै कीती रात खसम विसारह ते कम जात नानक नावै बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर।

मेरा प्राण सुखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत।

जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवां, काहे रे मन चित वह उत्तम, जा आहर हर जीव परया, शैल पत्थर मह जंतु पाए, ताका रिजक आगे कर धरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्या वह सब त्या वह तुद जी हर सच्चे सिर जनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्या वह संतो जी

पूरक मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, पही परापत मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितै नकाम, मिल साध संगत।

विश्वकर्मा शरण परे की राखहु शर्मा, जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया, कहु नानक हम नीच कर।

अवर ना त्याऊं, जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारी तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे फुबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करे हो रच्छा। राख लिहु मोहे राखन हारे, साहिब संत।

काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव की ओ, वेदराज ब्रह्मा जूतियो।

आप सुवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने, जब उदकर्क करा कर तारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा, जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अरयालम, निरंकार निर्भकार निर्लंब, आद नील नाद संभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको पहेव न पावत वेदा, ताको कृपाहन अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव, आप अपनी बुद्ध है जीती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही पूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर कैठा, शिगरी सृष्टि दिखाए अचम पव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे अस तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह ऐ है, रच्छा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो, रिद्ध सिद्ध कर मुँह सब हुई, दुष्ट छाह छव सकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल भास्ते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारु कहा, दारिद दुष्ट दुख ते

कहे मथिक न मान्यू। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुपेद कहे हम एक न जानियू। श्री अस्पान कृपा तुमरी कारू मैं न कहू सब तो हे बखाने।

करता तेरै सब किछ है, जिस देह सो पावै सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावै नाम जिनकै मन वसिया, वाजी शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब, क्या नाहीं घर तेरै।

कर सांत सुख मन आय वसिया, जिने इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो, जिस दिया एह वडियाइया। कह नानक सुनो संतो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारू, वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया, पंच दूत उदवास कीते, काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ, से नाम हर कह लागे, कह नानक तह सुख हुआ, तित घर अनहद वाजे, अनद सुनहु।

तरस पे ओई, तरस पया मेहरा मत होई, सतगुर सज्जन मिलया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवै हरिया, तरस पया मेहरा मत होई, सतगुर सज्जन

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पै

प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु नाम चिते आवे, चिते आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छा रियायत, देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री।

ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लावो बिखम नदी जाए तरणी हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिखाई।

0: अष्टपदि रमैया के गुण चेत परमी
1: कवन मूलते कवन दृष्टनी
0: जिन तू साज सुवार सिगारिया
1: गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया
0: बार्ब विसुथा तुझे प्यारा दूध
1: हर जोवन भोजन सुख सूद
0: बिरद भया ऊपर साख सैन
1: मुख प्याओ बैठ को देन
0: एहो निर्गुण गुण कशु न बूझे
1: बक्स ले तो नानक सीजे
0: जे प्रसाद धर ऊपर सुख बसै
1: सुत प्रात मीत बनता संग हसै
0: जे प्रसाद पीवे शीतल जला
1: सुखदाई पवन पावक अमला
0: जे प्रसाद भोगै सब रसा
1: सगल समगरी संग साथ बसा
0: दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना
1: सह त्याग अमल संग रचना
0: ऐसे दोख मूड अंध बेआपे
1: नानक गाढ़ ले हो प्रभु आपे
0: आद अंत जो रखन हार
1: तिस्य प्रीत न करे गवार
0: या की सेवा नव निध पावे
1: आस्य मूड़ा मन नहीं लावे
0: जो ठाकुर सद सद

0: मन पहरता का जस गाविजे।
1: जय प्रसाद सबको मन
0: मुखता को जस रसन बखाना।
1: जय प्रसाद तेरो रहता धर्म
0: मन सदा ते आए केवल पार ब्रह्म।
1: प्रभु जी जब दरगह मान पावे
0: नानक पत सेती घर जावे।
1: जय प्रसाद आरोग कंचन देही
0: लिव लावो तिस राम स्नेही।
1: यह प्रसाद तेरा ओला रहत
0: मन सुख पावे हर हर जस कहत।
1: यह प्रसाद तेरे सगल चिद्र ठाके
0: मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताके।
1: यह प्रसाद तुझको न पहुँचे
0: मन सास सास सिमरहु प्रभ ऊचे।
1: यह प्रसाद पाई दुर्लभ दे
0: नानक ताकी भगत करे।
1: यह प्रसाद आप उखन पहरीजे
0: मन तिस सिमरत क्यों आल सुकीजे।
1: यह प्रसाद असव हस्त असवारी
0: मन तिस प्रभ कौ कबहू ना बिसारी।
1: यह प्रसाद बाग मिलख तना
0: राख परोए प्रभ अपने मना।
1: जिन तेरी मन बंत बनाई
0: उठत बैठत सद ते सहते आई।
1: सहते आए जो एक लख
0: इहां उहां नानक तेरी रख।
1: यह प्रसाद करह पुन बहुदान
0: मन आठ पहर कर किस का ध्यान।
1: यह प्रसाद तू आचार व्यवहारी
0: किस प्रभ को सास सास चितारी।
1: यह प्रसाद तेरा सुंदर रूप
0: सो प्रभ सिमरौ सदा अनूप।
1: यह प्रसाद तेरी नीकी जात
0: सो प्रभ सिमर सदा दिन रात।
1: यह प्रसाद तेरी पत्र है
0: गुर प्रसाद नानक जस का है।
1: यह प्रसाद सुने कर्ण नाद
0: यह प्रसाद पेख है बिस्माद।
1: यह प्रसाद बोल है अमृत रसना
0: यह प्रसाद सुख सहजे बसना।
1: यह प्रसाद हस्त कर जल
0: यह प्रसाद संपूर्ण फल।
1: यह प्रसाद परम गत पाव है
0: यह प्रसाद सुख सहज समाव।
1: ऐसा प्रभ त्याग अवर गत लाग हो
0: गुर प्रसाद नानक मन जागो।
1: यह प्रसाद तू प्रगट संसार
0: किस प्रभ को मूल न मन हो बिसार।
1: प्रसाद तेरा प्रताप
0: रे मन मूड तू ता को जाप।

0: साध कै संग मुख उज्जल होत,
1: साध संग मल सगली खोत,
0: साध कै संग मिटै अभिमान,
1: साध कै संग प्रगटे सुज्ञान,
0: साध कै संग बुझै प्रभ नेरा,
1: साध संग सब होत निवेरा,
0: साध कै संग पाए नाम रतन,
1: साध कै संग एक ऊपर जतन,
0: साध की महिमा वर्ण कौन प्राणी,
1: नानक साध की शोभा ब्रह्म हंस मानी,
0: साध कै संग अगोचर मिलै,
1: साध कै संग सदा पर फुलै,
0: साध कै संग आवे बस पंचा,
1: साध संग अमृत रस पुंचा,
0: साध संग होए सब की रेन,
1: साध कै संग मनोर बैन,
0: साध कै संग नकत हूं तावे,
1: साध संग स्थित मन भावे,
0: साध कै संग माया ते भिन्न,
1: साध संग नानक प्रभु सुप्रसन्न,
0: साध संग दुश्मन सब मीत,
1: साधु कै संग महापुनीत,
0: साध संग किस्यों नहीं बैर,
1: साध कै संग न बिगै बैर,
0: साध कै संग नाही

0: साध कै संग न कबहू तहवै
1: साध कै संग सुरा सुख पावै
0: साध संग बस्त अगोचर लाहै
1: साधु कै संग अजय सहै
0: साध कै संग बसै थान ऊचै
1: साधु कै संग महल पूचै
0: साध कै संग दृढ़ै सब धर्म
1: साध कै संग केवल पार ब्रह्म
0: साध कै संग पाए नाम निधान
1: नानक साधु कै कुर्बान
0: साध कै संग सब कुल उधारै
1: साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै
0: साधु कै संग सो धन पावै साधु संग धर्म राय करे सेवा
1: साधु कै संग शोभा सुर देवा
0: साधु कै संग पाप पलायन
1: साधु संग अमृत गुण गायन
0: साधु कै संग सर्वथान गम
1: नानक साधु कै संग सफल जनम
0: साधु कै संग नहीं कछु काल
1: दर्शन वेर दोत निहाल
0: साधु कै संग कलूख तहरै
1: साधु कै संग नरक पर हरै
0: साधु कै संग इहां उहां सोहेला
1: साधु संग विचरत हर मेला
0: जो इच्छा सो ही फल पावै
1: साधु कै संग तर जावै
0: पार ब्रह्म साध रित बसै
1: नानक उदरै साध सुन रसै
0: साधु कै संग सुनो हर नाउ
1: साधु संग हर के गुण गाओ
0: साधु कै संग नमन ते बिसरै
1: साधु संग सर पर निस्तरै
0: साधु कै संग लगै प्रभ मीठा
1: साधु कै संग गढ़िछा
0: साधु संग पहे आज्ञाकारी
1: साधु संगत पई हमारी
0: साधु कै संग मिटे सब रोग
1: नानक साध बेटे संयोग
0: साधु की महिमा।

0: देखै नेत्र
1: साध की टहल संत संग हेत
0: करन सुने काहू की निंदा
1: सब ते जाने आपस को मंदा
0: गुर प्रसाद बिखिया पर हरे
1: मन की बासना मन ते तरे
0: इंद्री जित पंच दोख दे रहत
1: नानक कोट मधे को ऐसा अपरस
0: वैष्णो सो जिसु परसो प्रसन्न
1: विष्णु की माया ते हुए पिन
0: कर्म करत होवे नेह कर्म
1: जिस वैष्णो का निर्मल धर्म
0: काहू फल की इच्छा नहीं बाचे
1: केवल भगत कीर्तन संग राचे
0: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
1: सब ऊपर होवत कृपाल
0: आप दृढ़ अबरह नाम जपावे
1: नानक ओ वैष्णो परम गत पावे
0: भगवती भगवंत भगत का रंग
1: सगल के आगे दुष्ट का संग
0: मन ते विनसै सगला परम
1: कर पूजै सगल पार ब्रह्म
0: साध संग पापा मल खोवे
1: तिस भगवती की मत उत्तम होवे
0: भगवंत की टहल करे नित नीत
1: मन तन अर्पै बिसन परीत
0: हर के चरण हृदय बसावे
1: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
0: पंडित जो मन पर बोध
1: राम नाम आत्म में सोद
0: राम नाम सारस पीवे
1: उस पंडित कै उपदेश जग जीवे
0: हर के कथा हृदय बसावे
1: सो पंडित फिर जोन न आवे
0: प्राण सिमरत बुझे मूल
1: सुखम में जान असथूल
0: चौहरना को दे उपदेश
1: नानक उस पंडित को

0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म।
1: जिसके मन बार ब्रह्म का निवास,
0: तिसका नाम सत रामदास।
1: आत्म राम दिस नदरी आया,
0: दास संतन पाए तिन पाया।
1: सदा निकट निकट हर जान,
0: सुदास दर गए परवान।
1: अपने दास को आप कृपा करे,
0: तिस दास को सब सोजी परे।
1: सगल संग आत्म उदास,
0: ऐसी जुगत नानक रामदास।
1: प्राण की आज्ञा आत्म हितावे,
0: जीवन मुक्त सो कहा।

0: सलोक उस तत करे अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी
1: कई कोट आचार व्यवहारी
0: कई कोट पहे तीर्थवासी
1: कई कोट वन प्रमेह उदासी
0: कई कोट वेद के श्रोते
1: कई कोट तपी सरोते
0: कई कोट आत्म ध्यान तहर
1: कई कोट कब काब विचार
0: कई कोट नव तन नाम त्यावै
1: नन करते का अंत न भाव
0: कई कोट पहे अभिमानी
1: कई कोट अंध अज्ञानी
0: कई कोट किरपन कठोर
1: कई कोट अपिग आत्म निघोर
0: कई कोट पर दर्ब को हिरा
1: कई कोट पर दुख नांगर
0: कई कोट माया श्रम माहे
1: कई कोट परदेश फरमाहे
0: जित जित लावो तित तित लगना
1: नानक करते की जान करता रचना
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी
1: कई कोट राजे रस भोगी
0: कई कोट पंखी सर्प उपाए
1: कई कोट पत्थर बिरख ने बजाए
0: कई कोट पवन पानी बैसंत्र
1: कई कोट देश भू मंडल
0: कई कोट ससियर सूर नक्षत्र
1: कई कोट देव दान इंद्र सर छत्र
0: सकल समग्री अपने सूत तार
1: नानक जिस जिस भाव जिस जिस निस्तार
0: कई कोट राजस तामस सातुक
1: कई कोट वेद प्राण सिमृत हर शास्त्र
0: कई कोट किए रतन समुंद
1: कई कोट नाना प्रकार जंत
0: कई कोट किए चर जीवे
1: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे
0: कई कोट जाख्य किन्नर पिशाच
1: कई कोट भूत प्रेम।

0: निंद्रा
1: कई कोट बैठत ही खाहे
0: कई कोट गाले थक पाहे
1: कई कोट किए तानवंत
0: कई कोट माया महजिंद
1: जह जह पाणा तह तह राखे
0: नानक सब किछ प्रभु कै हाथे
1: कई कोट पए बैरागी
0: राम नाम संग तिन लिव लागी
1: कई कोट प्रभु को खोजंते
0: आत्म में बार ब्रह्म लहंते
1: कई कोट दर्शन प्रभु प्यास
0: इनको मिलियो प्रभु अविनाश
1: कई कोट मांगे सतसंग
0: पार ब्रह्म दिन लागा रंग
1: जिनको हुए आप सुप्रसन्न
0: नानक ते जन सदा तन धन
1: कई कोट खानी अरखंड
0: कई कोट गास ब्रह्मंड
1: कई

0: अनक तपस्या करे अहंकार,
1: नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार,
0: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे,
1: हर दरगह कहु कैसी गवे,
0: आपस को जो भला कहावे
1: तिसे भलाई निकट न आवे,
0: सर्व की रेन जाका मन होए,
1: कहो नानक ताकी निर्मल सोए,
0: जब लग जाने मुझते कछ होए,
1: तब इस को सुख नाही कोए,
0: जब हे जाने मैं कुछ करता,
1: तब लग गर्भ जोन मह फिरता,
0: जब तारे को बैरी नींद,
1: तब लग नहीं चलना ही चीत,
0: जब लग मोह मगन रंग माए,
1: तब लग धर्म राय दे सजाए,
0: प्रभु कृपा ते बंधन टूटे,
1: गुरु प्रसाद नानक हो छूटे,
0: सहस घटे लख को उठतावे,
1: तृप्त न आवे माया पछे पावे,
0: अनक भोग विखिया के करे,
1: नह तृप्तावे खप खप मरे,
0: बिना संदोग नहीं दो राजे,
1: सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे,
0: नाम रंग सर्व सुख होए,
1: बट भागी किसे प्राप्त होए,
0: कर्म करावन आपे आप,
1: सदा सदा नानक हर जाप,
0: कर्म करावन करने हार,
1: इसके हाथ कहा विचार,
0: जैसी दृष्ट करे तैसा होए,
1: आपे आप आप प्रभ सोए,
0: जो किच की न सो अपने रंग,
1: सब ते दूर सब हूँ कै संग,
0: दूजे देखे करे विवेक,
1: आपे एक आपे अनेक,
0: मरे नवीन से आवन जाए,
1: नानक साधी रहया समाए,
0: आप उपदेश समझे आप,
1: आपे रचिया सब कै साथ,
0: आप की नो अपन विस्तार,
1: सब काश उसका ओ करने हार,
0: उससे भिन्न गहो कि जो
1: थान थनंतर एक कैसो ए,
0: अपने चल तू आप करने हार,
1: कौतुक करे रंग अपार,
0: मन में आप मन अपने माहे,
1: नानक कीमत कहना।

0: अष्टपदी संत कह दुखन आरजा घटै,
1: संत कह दुखन जम ते नहीं छुटै,
0: संत कह दुखन सुख सब जाए,
1: संत कह दुखन नरक मह पाए,
0: संत कह दुखन मत होए मलीन,
1: संत कह दुखन जो बाते हीन,
0: संत के हते कौ रखै न कोए,
1: संत कह दुखन थान भ्रष्ट होए,
0: संत कृपाल कृपा जे करै,
1: नानक संत संग निंदक भी धरै,
0: संत के दुखन ते मुख पवै,
1: संतन कह दुखन का ज्यो लवै,
0: संतन कह दुखन सर्प जोन पाए,
1: संत कह दुखन त्रिगद जोन कर्माए,
0: संतन कह दुखन कृष्णा मैं जलै,
1: संत कह दुखन सब को चलै,
0: संत कह दुखन तेज सब जाए,
1: संत कह दुखन नीज नी जाए,
0: संत दुखी का थाउ को नाहे,
1: नानक संत पावै थाउ विगत पाहे,
0: संत का निंदक महा अतताई,
1: संत का निंदक टिक न पाई,
0: संत का निंदक

0: संत का दुखी अध बीच ते टूटे,
1: संत का दुखी किते काज ना बहुचे,
0: संत के दुखी कौ ध्यान प्रमाइए,
1: संत का दुखी उजड़ पाइए,
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा,
1: न्यो सास बिना मृत की लोता,
0: संत के दुखी की जड़ किश नाहे,
1: अपन बीज आपे ही खाए,
0: संत के दुखी कौ अवर न रखन हार,
1: नानक संत पावे तलै वार,
0: संत का दुखी इउं बिल लाए,
1: ज्यों जल भी हूं मछली तड़पड़ाए,
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजा,
1: ज्यों पावर कींदन नहीं त्रापे,
0: संत का दुखी छुटे अकेला,
1: ज्यों बुआर जल के दमाए देला,
0: संत का दुखी धर्म ते रहत,
1: संत का दुखी सदमित्या कहत,
0: किरत निंदक का तुर ही पया,
1: नानक जो पावे सोई त्या,
0: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए,
1: संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए,
0: संत का दुखी सदा सहकाइए,
1: संत का दुखी नाम रहना जुआइए,
0: संत के दुखी की पूजे न आशा,
1: संत का दुखी उठ चले निराशा,
0: संत का दुख ना तृष्टा कोए,
1: जैसा पावे तैसा कोई होए,
0: पया किरत न मिटा कोए,
1: नानक जाने सच्चा सोए,
0: सब घट तिसके ओ करने हार,
1: सदा सदा तिसको नमस्कार,
0: प्रभ की उस्तत करहु दिन रात,
1: तिसे त्यावो सास विरास,
0: सब काश वरत तिस

0: अविनाशी प्रभ आपे आप
1: आपन किया कछु न होए
0: जे सौ प्राणी लोचै कोए
1: इस बिन नाही तेरा किछ काम
0: गत नानक जप एक हर नाम
1: रूपवंत होए नाही मोह
0: प्रभ की ज्योत सगल घट सो है
1: धनवंता होए क्या को गर्व
0: जा सब किछ तिस का

0: नाना चलित करे खिन माहे
1: पूरे पूर्ण सब ठाए
0: नाना भेद कर बनत बनाई
1: अपनी कीमत आपे पाई
0: सब घट तिसके सब तिसके ठाओ
1: जब जब जीवे नानक हरनाओ
0: नाम के तारे सगले जंत
1: नाम के तारे खंड ब्रह्मंड
0: नाम के तारे सिमरत वेद पुराण
1: नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान
0: नाम के तारे आकाश पाताल
1: नाम के तारे सगल आकार
0: नाम के तारे पुरिया सब पवन
1: नाम के संग उद्रे सुन श्रवन
0: कर कृपा जिसे आपने नाम लाए
1: नानक चौथे पद में सुजन गत पाए
0: रूप सत जाका सत अस्थान
1: पुरख सत केवल प्रधान
0: करतूत सत सत जाकी बाणी
1: सत पुरख सब महे समानी
0: सत कर्म जाकी रचना सत
1: मूल सत सत उत्पत
0: सत करणी निर्मल निर्मली
1: बजाए तिसे सब भली
0: सत नाम प्रभ का सुखदाई
1: विश्वास सत नानक गुर ते पाई
0: सत बचन साधु उपदेश
1: सत तेजंदा करदा प्रवेश
0: सत निरत बूझे जे कोए
1: नाम जगत राखी गत होए
0: आप सत किया सब सत

0: अष्टपदी संत जना मिलकर हो विचार
1: एक सिमर नाम आधार
0: अवर उपाव सब मीत बिसारो
1: कर्ण कमल रिद में उतारो
0: कर्ण कारण सो प्रभ सम्राथ
1: दृढ़ कर गो नाम हर वाथ
0: एह तन संचो हो वो भगवंत
1: संत जना का निर्मल मंत
0: एक आस राखू मन माहे
1: सर्व रोग नानक मिट जाहे
0: जिस तन को चार कुंत उठत हवै
1: तन हर सेवा ते पावै
0: जिस सुख को नित

0: जह पसरै पाशार संत प्रताप
1: दुहु पाख का अपहतनी
0: उनकी शोभा उनहु बनी
1: अपह कौतक करै आनंद चोज
0: आपे रस भोगन।

0: अष्टपति आप कथय आप सुन नहार
1: आपे एक आप विस्तार
0: जाति से पावे तां श्रेष्ठ उपाय
1: आपने पाणे ले समाए
0: उसते पिन तुमते पिन नहीं किश होए
1: आपने सूत सब जगत पर होए
0: जाको प्रभ जियो आप बुझाए
1: सच नाम सोई जन भाए
0: सो समंदर सी

0: मिल करहु आनंद
1: परमानंद
0: राम नाम तत करहु विचार
1: दुर्लभ देह करो उधार
0: अमृत बचन हर के गुण गाओ
1: आनंदन गाहे सुहाओ
0: आठ पहर प्रभु के खो नेरा
1: ज्ञान बिन से अंधेरा
0: सुन उपदेश हृदय बसावहो
1: मनिच्छे नानक बल पावो
0: हालत पालत दोएले हो सवार
1: राम नाम अंतर उतार
0: पूरे गुर की पूरी दिखिया
1: मन बसे जिस साज परिखिया
0: मन तन नाम जपो लिव लाए
1: दुख दर्द मन ते पहुँचाए
0: सचवा

0: संत जना के हृदय सब तारम
1: जना सुने सो बचन
0: सर्वव्यापी राम संग रचन
1: किए रात
0: सात बचन साधु सब कह तो
1: जो होए सोई सुख माने
0: कर्ण करावण हार प्रभ जाने
1: अंतर बसे बाहर पियो ही
0: नानक दर्शन देख सब मोही
1: आप सत किया सत सत
0: तिस प्रभ ते सगली उत्पत
1: तिस पावे ता करे विस्तार
0: तिस पावे ता एक ओंकार
1: कला लखी न जाए
0: जिस पावे तिस

0: पूरन होई सेवक की सेव।
1: आल जंजाल बिगाड़ते रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते,
1: कर प्रसाद दया प्रभु धारी,
0: नानक निबही खेप हमारी,
1: प्रभु की उस्तत करो संत मीत,
0: सावधान एकाग्र चीत,
1: दुख मनी सहज गोविंद गुण राम,
0: जिस मन बस है सो होते निधान,
1: सर्विच्छा ताकि पूर्ण होए,
0: प्रधान पुरख प्रकट सब।

0: कांड तथ नाद विनोद कोड आनंद
1: शर्म कांड की वाणी रूप तिथे कहाड़त कड़िए बहुत अनूप
0: राखिया गल्ला कथिया न जाहे जेको कह पिछे पछताए
1: तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे कड़िए सुरा सिदा की सुध।

0: अन्य दान है, अंतर्वर्ग है, असर्ग है,
1: अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है,
0: अजन्म है, अवर्ण है, अभूत है, अवर्ण है,
1: अगंज है, अपंज है, अचूज है।

0: है, नृसिक है, निर्लंब है, असंभ है,
1: अजम है, अजम है, अपूत है, अशूत है,
0: अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है,
1: अजीत है, अपीत है, अबा है, अगा है,
0: अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है,
1: प्रयाग प्रयाज।

0: निरंजन दस अंजन मुक्ताय काम
1: आप रूपमीक अनुष्टतेक पुरखवतूत
0: गर्व गंजन सर्वंजन आद रूप असुत
1: अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख पार
0: सर्व लायक सर्व कायक

0: चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता
1: चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने
0: चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती
1: चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले
0: चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे
1: चतुर चक्र माने चतुर चक्र जाने
0: चाचरी छंद ना सत्रह न मित्र न परमंग न पित्र
1: न कर्मंग न खाए अजन्म अजाए
0: न चित्र न मित्र परे है पवित्र
1: से अदिश अदृश अकृश
0: भगवती छंद प्रसाद कथते के आचिज देश के आपिज पेश
1: कर्म के आज परमे
0: के आपिज लोक के

0: के सर्वंगली है के सर्वंगली है
1: के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र धान्य है
0: के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन
1: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
0: के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र साज्य
1: के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है
0: के सर्वत्र क्या हो के सर्वत्र पाप
1: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
0: के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल
1: के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता
0: के सर्वत्र।

0: प्रयुक्त अनुप है,
1: निरुक्त सदा है, विभुगत प्रभा है,
0: अनुप स्वरूप है, प्रयुक्त अनुप है,
1: क्या श्री चंद अपंग है, अनंग है, अपेक है, अलेख है,
0: अपर्म है।

0: शुद्ध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के।
1: सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राणपति के।
2: भगवान की पाई कृपा होते एक रति बिन एक रति के।
1: माते मदंग जरे जर संग अनूप।

0: तीज अतार सबे सब चार हजार के देख
1: हरि भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख
0: शुद्ध से बाह दुरंत दुवाह ससाज सनह दुर्जन दलेंगे
1: भारी कुमार परे मन कर पर्वत पंख हले न हलेंगे
0: तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे
1: हरि भगवान।

0: ज्ञान के तोड़न हार सुबात नहीं चक चार लवैया।
1: सर्व श्री सब को शरणायक जाचक अनेक सो एक दवैया।
0: दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे।
1: जीव जिते जल में तल में पल ही पल में सब ताप तपेंगे।
0: पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन गे।

0: अनुमानत
1: महामूर्ख भेद न जानत
0: महादेव को कैत सदा सेव
1: निरंकार का चिंतन सेव
0: आपो अपनी बुद्ध है जेती
1: वर्णत पिन पिन जेती
0: तुमरा लखा न जाए पसारा
1: केवल सजा प्रथम संसारा
0: एक रूप अनूप स्वरूपा
1: रंग पयो राव कई पूपा
0: गंडज जेरत स्थित चकिनी।

0: सोर नर मंजन अमृत को दे सो अमृत करते पाया
1: पाया अमृत कृपा कीनी सच्चा मन वसाया
0: जी ज्ञान सतत अपाय एक वेग परसन आया
1: लाभ लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया
0: कह नानक जिसनु आप टुटा तन अमृत करते पाया
1: भगता की चाल निराली चाला निराली भगता गेरी विकम मार्ग चलना
0: लाभ लो अहंकार ता तृष्णा बहुत नाही बोलना
1: धन्य तिखी बाल निकी एत मार्ग जाना
0: गुर प्रसादी जिनी आप तजया हर वासना समाणी
1: कह नानक चाल भगता युग हो युग निराली
0: जो तू चला एह तब चल है स्वामी और क्या जाना गुण तेरे
1: जिन तू चला एह तब चल जिना मार्ग पावे
0: कर कृपा जिन नाम लाहे से हर हर सदा त्यावे
1: जिसनों कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे
0: कह नानक सच्चे साहे जो पावे तब चलावे
1: एह सोहेला सब सुहावा सब दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया
0: एहो तिनके मन वस्या जिन धुरह लिखिया आया
1: एक फिरह कनेरे करह गला गली किने न पाया
0: कह नानक सब सोहेला सतगुरु सुनाया
1: पवित होए से जना जिनी
0: हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया
1: पवित माता पिता कुटुंब सहसो पवित संगत सुहाया
0: कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन बसाया
1: कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया
0: कर्मी सहना उपजा बिन सहजे सहसा न जाए
1: नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म गमाए
0: जीव मलिन है किस संयम तो ता जाए
1: मन तो शब्द लागू हर्ष्यो रहो चित लाए
0: कह नानक कर प्रसादी सहज उपजे ए सहसा इब जाए
1: जीहो मैले बारो निर्मल जीहो ता मैले की जन्म जुए हारिया
0: ए तसना वड्डा रोग लगा मन मनोह बसारिया
1: वेदा मैं नाम उत्तम सो सहनाही फिर जो बिता लिया
0: कह नानक जिन सच जया

0: प्रवान जन सतगुरु सिंह चित लाया
1: अरबिन
0: अवध न देखो कोई नदरी हर निहालिया
1: संसार तुम देख दे हर रूप है हर रूप नजरी आया
0: प्रसादी बुझा जा वेखा हर एक हरबिन अवध

जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै कर नौ निदा वह ताए, सब थाई हुई सहाय, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई हुई सहाय, दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। पंजा प्यारिया चौहान साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिना नाम जपिया वंड छकिया, देख चलाई तेग वाही, देख के अनडिठ कीता, तिना प्यारिया सुचियारिया दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। जिन्ना सिंगा सिंगनिया धर्म हे तुसीस दिते, बंद बंद कटवाए खोपरिया लोहाइया, चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए, गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया सिक्खी केसा स्वासा नाल निभाही, तिना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु, चित आवे चितावन का सदका, सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब, तहां तहां रचिया रियाए, तो देख देख फते बिरद की बैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाए, खालसे जी के बोल वाले बोलो जी वाहे गुरु। सिखा नु सिखी दान, केश दान, रहत दान, विवेक दान, विसाव दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान, चौंकियां झंडे बूंगे, जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखां दा मन नीवा, मत उची मत पत दे रखे आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जीओ, श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान खालसा जी बख्शिश करो। हे निमाणिया दे मान सतगुरु, नितानिया दे तान सतगुरु, ने उटियां दी उट गुरु गरीब नवाज, दसों पातशों की आत्मक जोत, हाजरा हजूर जाहरा जहूर, चवर शतर तख दे मालक गुरु गरीब नवाज, धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी, आप जी ने महान बख्शिश रहमत की, अमृत वेले दे जागने बख्शे, अमृत वेले पावन पवित्र तख्तां ते प्रकाश मानो करके दाराइयां संगतां नूं दर्शन दे दार बख्शिश कीते, आप जी का कोटान कोट धन्नवाद, सतगुरु जी आप जी की कृपा सदका पावन हजूरी अंदर अमृत वेले दे सुंदर दीवान सजे, सजे दीवान अंदर आप जी की अमृतमई बाणी, श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ नितने बाणियां दे पाठ संगति रूप विच होए, गरीब नूं आज आप जी की अगाध बोध बाणी पढ़दे हां, आप जी क्या संगतां पासों बेअंत बेअंत भुल्लां होईआं आप जी ने खिमा कर देनियां, अणजाण बच्चे समझ के मुआफ करन अगे तो रहमतां करनियां, बाणी शुद्ध ते स्पष्ट पढ़न सुणन विचारन दी दात समूह संगत नूं प्रदान करनी, सतगुरु जी बेअंत संगतां ने अमृत वेले आप जी के पावन पवित्र चरण कमलां दी हाजरी भरी, तिल फुल भेट आप जी के दर ते प्रवान करनी, रहमतां करनियां हाजरियां दर ते प्रवान करनियां, कदम दर कदम लेखे विच लाउणा, पढ़ी सुनी बाणी दा भाव दर आईयां समूह संगतां नूं प्रदान करना, सतगुरु जी रहमत करनी, किरत कमाईयां विच वाधे पाउणे, घरां परिवारां विच बच्चियां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना, देश परदेश रखिया करनी, बेअंत संगतां ने मीडिया दे माध्यम राहीं हाजरियां भरियां, सेवावां भेजियां, सभना दियां हाजरियां सेवावां दर ते प्रवान करनियां, बेअंत संगतां वल्लों तन मन धन दे नाल गुरु के लंगरां विच सेवावां कीतियां जा रहियां ने, सभना दियां हाजरियां दर ते प्रवान करनियां, अरदासां बेनतियां कबूलनियां, सतगुरु जी रहमतां करनियां,
ਜੋ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਹਨ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਰਤਣਾ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਚਾਰ ਪੈਰੈਨ ਸੁਖ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦਮਈ ਸੁਖਮਈ ਬਤੀਤ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤਨ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਹਜੂਰ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਰ ਆਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜੀ ਕਰੋ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਖਰਵਾਦ ਘਾਟ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ।

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर जन तो विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेद विदानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लग है प्राणी

कुदरत सुना है, कुदरत पाओ सुखसार, कुदरत पाता लिया काशी, कुदरत सर्वाकार, कुदरत वेद पुराण कतेबा, कुदरत सर विचार, कुदरत खाना पीना पहनन, कुदरत सर प्यार, कुदरत जाति जिनसी रंगे, कुदरत जी जहान, कुदरत नेकियां, कुदरत बदियां, कुदरत मान अभान, कुदरत पौन पानी बै संतर, कुदरत धरती खाक, सब तेरी कुदरत नूं कादर।

0: कोलू चरखा चक्की चक थलवारो ले बहुत आनंद लटू मदानियान गहा पंखी पौंदियां ले नसा सूए चढ़ पवाइया जन नानक पौंदियां गणित ना अंत
1: मंदर बंद पवाए सोए पया कृत नचे सब कोए नच नच हसे चले सिरोए उठना जाई सिदना होए नचन कुदन मन का चाव नानक जिन मन भाव।

मथेट का पेड़ धोती कखाई हाथ फिर जगत कसाई नील बस्त्र पैर हुए प्रवान मलेज तान ले पूजे प्राणा भाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर कैसे ना जाना।

हमको कर तेरे दरबार, पौके आगे बदन पसार, एते को करहो बेगाना, पौका स्तनताई, भगत ही नानक जी होएगा ता खसमे नाव न जाए। अगले शब्द सतगुरु पातशाह जी अरदास बेनती की है, केवल ते केवल तेरे चरणा नाल जुड़के एहो जा जीवन जी लिए, सेवक की अरदास प्यारे, जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे। क्योंकि अवस्था ऐसी बन गई मालक जी, आखां जीवा विसरै मर जाओ, फिर सेवक की अरदास प्यारे, जन की भुख तेरा नाम आहार, तो दाता प्रभ देवन हार। ये जिहड़ियां सत्संगत दियां कड़ियां हन, सतगुरु पातशाह कहिंदे ने जी भावना नाल कीती जाण तां सतगुरु पातशाह की कहिंदे ने, गावीए सुणीए मन रखीए, भाव दुख पर हर सुख कर लै जाए।

चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, जल में जंत उपायन तिना पी रोजी दे। बंदा उहदे ते भरोसा ना रख के डावां डोल होया रहिंदा, पता नहीं कल नूं की हो जाणा, आउण वाले समें विच की हो जाणा। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी रहमतां करदे ने, प्राणी तू लाहा लैण वास्ते आया ते तेरी चिंता उन्नू है, तू लाहा लई जा। बाणी पढ़िया कर, बाणी सुनिया कर, बाणी गाया कर, जिन्ना समा मिलदा भजन बंदगी करिया कर, अपनी किरत कमाई दसा नौवां दी मेहनत करदिया करदिया अपनी रसना दे नाल जपी जा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे। आओ प्यार दे नाल धन गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी दी रसना तों उच्चारण कीता होया शब्द, तूं काहे डोलें प्राणिया, तुद राखेगा सिरजणहार। मिल करके गायन करिए।

पावन पंक्तियां एक बारी गायो सारे, पता नहीं किदा गाया प्रवान हो जाए। जीवन विच ये वडमुली बख्शिश साड़ी चोड़ी पै सकती है, पै जाएगी एक बारी सारे। कहो सचे पातशाह, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही परमात्मा है, हर एक दे अंदर वो आप बैठा हुआ है।

0: महाराज मेर करन, सतगुरु की बाणी सतस्वरूप है, गुरबाणी बनी है, जो महाराज कह रहे ने वो अमली जामा साडे जीवन विच प्रैक्टिकल भी हो जाए। ए नहीं असी गा के चले गए, तुसी सुन के जीवन दा ये आधार बन जाए कि जीवन बाणी अनुसार उच्चा सुच्चा बन जाए। जी अगला प्रोग्राम साडी भैन जी उन्हां पासों बड़े प्यार नाल सरवण करो, असीस देओ, गज के फतेह बुलायो। वाहिगुरु जी का खालसा,
1: वाहिगुरु जी की फतेह। एसन साडे सत्कारयोग भाई ओंकार सिंह जी अते उन्हां दा कीर्तनीय जथा जिन्हां ने सानू कीर्तन बाणी दा कीर्तन सरवण करवाया है, आप जी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हुण आप जी नूं 2 मिनट वास्ते भाई जसविंदर सिंह जी ने जो सिख हैरीटेज नाइट के बारे आप जी ने इनफॉरमेशन शेयर करेंगे।
2: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब संगतां दे वास्ते बेनती है, अपील है कि सिख गुरद्वारा सैन होजे वालों काफ़ी एफर्ट्स कीतियां जांदियां ने, उपराले कीते जांदे ने, ते सिख हेरिटेज नाइट जो इवेंट्स हुंदे ने यह स्पोर्ट्स के बारे वो सैन होजे शार्क्स, गोल्डन स्टेट वॉरियर्स, सैन फ्रांसिस्को 49ers, सैन होजे जायंट्स, SF Giants, सैन होजे अर्थक्वेक्स, ये सारे इवेंट्स गुरद्वारा साहब वालों ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। तो असी चाहते हैं कि बहुत जरूरी आ, ये समय की लोड़ आ, जिमें कि अवेयरनैस की बहुत लोड़ हैगी अपने धर्म के बारे, अपने कल्चर के बारे, विरसे के बारे, क्योंकि असी इतने रहने, इस कम्यूनिटी के रिने, इतने विचरते हैं, उत्थे उन्होंने अपने बारे दसिया जाए, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे बार इदां दे इंसीडेंट भी होंदे ने जिहदे विच वे ओ हेट क्राइम्स होंदे ने एंड एवरीथिंग। देखो ये जिहड़ी गलबात आ ये अवेयरनैस दे बारे, जां किसे नूं फर्ज कर लो असी 2-4 बंदे, 5-10-15 जिन्हां नूं भी मिलदे आ, एटलीस्ट असी उन्हां नूं तां अवेयर करा रहे हैं, असी उन्हां नूं दस रहे हैं, उस गल दे विच कोई डेंट पा रहे हैं, ठीक है ना। सो इस करके बहुत ही जरूरी आ ਭਈ ਇਹ ਨਾ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਆ ਬੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:30 ਵਜੇ ਪੇਪੈਲ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਪੇਪੈਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਗੱਤਕਾ ਟੀਮ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਸਟਿਲ 45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਕਟਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: थैंक यू जसविंदर सिंह जी, आप जी ने सिख हैरिटेज नाइट बारे थोड़ी जी इनफॉरमेशन संगतान सांझी की। जब तक हुण भाई नवनीत सिंह जी आप जी ना कथा सरवण करवाएंगे, जब तक भाई सर जी आते हैं आप जी ना दो तीन अनाउंसमेंट शेयर कर लिया जाएंगे। एक साहित्यिक नूं जन्मदिन भाई दया सिंह जी का है, ते कल पादों की संगरांद है। 30 तरीक नूं संपूर्णता दिवस श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का है, ते राग दरबार 11-13 सितंबर नूं सैलीब्रेट किया जा रहा है। एक होर आप जी ने इनफॉरमेशन सांझी करनी सी कि सैन होज़े गुरुद्वारा ਦਾ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਪਕਮਿੰਗ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਸੇਮ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਟਸਐਪ, ਟਿਕਟੋਕ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ
3: ਸਾਹਿਬ ਜੀ।

प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरिया। प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरिया। परम सम्मान योग साहिब सतगुरु गुरु गरीब नवाज सरवरे कायनात बानी दे मजश्मे कुल आलम ते अपनी रहमत वरसाउन वाले शब्द गुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पाक पवित्र हजूरी नू मानदे होए गुरु रूप साध संगत जी आप संगती रूप विच जुड़ बैठे हो, बहुत ही प्यार दे नाल आप जिया ने गुरबाणी कीर्तन सरवन कीता है। भाई साहब भाई ओंकार सिंह जी अते उन्हां दे जत्थे पासों सुआउ समा होया है अमृत बाणी दी कथा दा। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह विचों आपां गुरु दे बचना राही कुछ सीख सकीए, कुछ कमा सकीए, ये अरदास करदिया ये उम्मीद करदिया सतगुरु दतार पिता महाराज जी दे पावन बचना विचों आप जी नाल भगत कबीर जी दे एक श्लोक दी दास विचार करनी चाहेगा। बाबा जी दा एक बड़ा प्यारा श्लोक है, कबीर साधु संग प्राप्ति लिखिया हुए लिलाट मुक्त पदार्थ पाई है थाक ना आव घट घाट। बड़ा प्यारा शब्द है, आओ गुरु कृपा करे इस पावन शब्द नू गुरबाणी दे संदर्भ विच रह के वाचन दा यतन करांगे। विचारां दी आरंभता तो पहला फतेह दी सांझ करो। प्यार सहित आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन पवित्र श्लोक अंदर भगत कबीर जी ने एक औखी घाटी का जिक्र किया है। अवकट घाट वो औखा रस्ता, औखी घाटी जिदे ते चढ़ना है, जिसनों सर करना है। असी सारे ही सियाने बैठे हाँ, संसार जगत दे अंदर हर कामयाब मनुख दे पास अपनी कामयाबी दे लई घट्टो घट तीन चीजा चाहीदियां। सब तो पहली चीज कि उहदे कोल एक मुकम्मल शरीर होवे, स्वस्थ शरीर होवे, पूरा शरीर होवे, नरोया शरीर होवे कह लिए कि उसने दुनिया दे विच कोई भी मुकाम हासिल करना है। एक घट्टो घट तीन वसीले जरूरी ने। उसने किसी भी खेत्र विच महारत हासिल करनी है, फतेह हासिल करनी है, ते उन्हों एक शरीर चाहिए, निरोया शरीर, स्वस्थ शरीर, मुकम्मल शरीर कह लिए। दूसरी चीज है एक चंगी गाइडेंस, चंगा यों कह लिए मार्गदर्शन करने वाला गुरु उस्ताद मुरशद। उदे तो बिना मनुख किसी भी खेत्र दे विच कामयाब नहीं हो सकता। शरीर उदे कोल चंगा हो सकता है, उदे कोल नरोया शरीर हो सकता है, ताकत अन्नी हो सकती है, सोझी बड़ी हो सकती है, पर जे वो किसी की गाइडेंस दे अंदर नहीं चलता, किसी दे निगरानी विच नहीं रहिंदा, किसी दे हुक्म नू मन के बरीकियां नहीं सीखता, तां मनुख चंगा होण दे बावजूद भी महारत हासिल नहीं कर सकता। इस करके गुरु की बड़ी जरूरत है, उस्ताद की मुरशद की बड़ी जरूरत होंदी है। पर इन्हां दोवां चीजां तों गुरु बड़ी वड्डी चीज है, पर वेख्यो इन्हां दोहां तों भी एक सब तों वड्डी चीज है जिदे तो बिना कदी मनुख कोई भी महारत हासिल नहीं कर सकता। कई वारी ऐसा हुंदा है कि मनुख कोल शरीर पूरा मुकम्मल नहीं हुंदा, पर फिर भी असीं संसार विच वेखदे हां बड़े बड़े लोकां ने महारतां हासिल कीतियां ने, उन्हां कोल शरीर बहुत पूरा नहीं सी, कोई रोगी सी जां किसे दा अंग कट्टिया सी, पर फिर भी उन्होंने

0: आगे पीछे आगे फोटो
1: सो फिर धन्यवादी हाँ जी ताडे सारयां दा जो तुसीं अज सेवा कीती आ ते नैक्सट ईयर असीं पहलां ही तुहानूं बेनती कर दिंदे नैक्सट कैंप जिहड़ा भी तुसीं लाउणा चाहुंदे हो गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी तुहाडा पूरा सहयोग देवेगी जिदां अज तुसीं कीता असीं तां कुछ नहीं कीता वैसे संदीप ने पूरा ऑर्गेनाइज करन दे विच सारा कुछ कीता सो अप्रीशिएट तुहाडी सारयां दी सेवा महाराज कृपा कर तुहानूं चढ़दियां कलां बख्शन होर सेवा करन दा मौका बख्शन वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।

खोज शब्द में राज करेगा खालसा आकी रहना ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो वाहे गुरु नाम जहाज है चढ़े सोतरे जो सर

हर सिमरत बिन से सब दुख। माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भोगवे, हर सिमरत बिन से सब दुख। रहाओ कोट जन्म के किल बिक न सह, सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूरन पही आसा, दर्शन भेटत उतरी भुख।

पार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तीन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्व न दुख। वाहिगुरु जी।